0: रेडियो दिलबर, अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: You're just seconds away from more of your favorite music on
2: 94.
3: Your family channel. In your own town.

0: कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट
1: योर फैमिली चैनल
0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: Your family channel in your own town. Listen, Radio Dilbar.
2: Just seconds away from more of your favorite music on
3: 94.
0: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par www.

बेबी फार्मूला क्रीम, बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश और दूसर दो खुराक दवा बेलाडोना ब्यूटी किट में है रोई जी फिर जैस्मिन वाले मुखोखी चना बस बीखी जमा मखते वाकई नोरम स्पिनशन द डियर जैस्मिन वाले जंटा डियर स्पिन वाले द बेलाडोना विटामिन द क्वालिटी पे लिहाज से डियर बेहतरीन दे नता सुकोली सी जी दमक द स्पिन वाले द बारे बे बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला बेलाडोना मुला सीरम बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश और दूसर दो खुराक दवा बेलाडोना ब्यूटी किट दी कॉस्मेटिक जनरल और मेडिकल स्टोर न जरूर वाले जी द लाइफ कॉल आगाज बहुम को ताजुमा लखन सलामी जी यो आर ब्याम जमा सलाम सर खैर सर वाले यो लाइव मजी द स्टूडियो गड़े की जमा सर टाइम जितना होगा ये उलिसनी बजे फिक्स रहा सर ये उलिसनी बजे शुरू दी द लाइफ कॉल नंबर आन कोम 0312-8888-150 जमा द स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर दाद खाइस्तुन खबरी दाद खुशालो खबरी और द खुशालो द रंगीनो पद सफर की बेलाडोना था सर बिल्कुल लाइव और बराहिनास मिलगरती और के जी बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दहर मख एतमाद दे दहर मख खाइस दे खाइस आग ची आगा पा नजर बाने हम राशि इंसान तो पखपल बाने जमा खाइस दोबारा रागले रे जी वो काला मायार वो काला एतमाद गम दे बेलाडोना पाकिस्तान डिर प्रोडक्ट निश्ता ब्रांड यानी बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सो एतमाद जमुंग कामयाबी दा बेलाडोना द खाइस यो नवे अंदाज दे वो काला मुकम्मल एतमाद न हूं उस मौजूद एतमाद देर ज्यादा जी हर रोज खेस्ता द बेलाडोना यार खबर की कम से किसी एतमाद खबर की कम से किसी कॉस्मेटिक खबर की ना के वाह बेलाडोना द टोल पर टॉप बनी हुई जी द खाइस यो मोतबर यो डेर लुनू बेलाडोना हुसन मायार और एतमाद बेलाडोना सर जी पाकिस्तान शुक्रिया पाकिस्तान में रहने वाले अफगान बहन भाइयों एतमाद उकड़ लो उधर एतमाद मजीद रह सर जारी साथी जी अब इंशाल्लाह हम कोशिश बतावी चाहिए मुंगसाज दोबारा बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स द खैर सलाओ जश्न कामयाबी प्रोग्राम्स मुंगे कूद दिन दे दो कालो कामयाब तरीन दूल सुकालो कामयाब तरीन सफर द हैदर मुमन होम्योपैथा और द हैदर मुमन द होम्योपैथिक जन अस्पताल अलावा द बेलाडोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान वो मकली जन मानसले की गट अख्तर मोडे डेर जात मुबारक शाह लागत मोखा द कामयाबी न बाद बल्कि द खुशहालो न बाद रोज द खैर सर जश्न कामयाबी रा रवाना दियो जी जमुंग सर दगा द कामयाबी का मुरजदान द बेलाडोना द कामयाबी रस सवाल अब इंशाल्लाह जमंग शुरुआत की गई यानी द फर्स्ट जून नब जमंग द लसम जून पर जमंग जितने तक सेलिब्रेशन मंग जारी साथ हुआ मुबारकबाद मुरली हूँ यो पर सर बखबर डिस्कस को यो केक बदखें सर सबाल माखाम की कट की और यो केक बदखें जून बान इंशाल्लाह मुंग कट को जी रेडी और बेलाडोना जहां बेलाडोना वहां बेलाडोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की सस्ती दीजिए बेलाडोना शैम्पू दोबारा बेलाडोना दबेख्तो दो गुर्जुदो दोबारा बेलाडोना टॉनिक शैम्पू बेलाडोना एंटीम्पू आओ दोना हेयर किट में हेरो जी तासु बसर के खुशकी रे बेंदे एंटी डेंडर शैम्पू इस्तेमाल वाले तासु वाली च बरा रवाना के जमा बसर के खुशकी होनी जो खुशकी दे इंसान दबेख्तो दो तबाही पहले नए मंजर दे न तो खुशकी न तो बच के दो बार बतासु इस्तेमाल वन एंड ओनली बेलाडोना एंटी डेंड्रफ शैम्पू यानी द खुशकई ओडेर बेहतरीन और आला तरीन फार्मूला कम कुछ शामिल जिंक पेरिथियोन सेलेनियम सल्फाइड और केटाकोनाजोल दाद पाकिस्तान तो बदे के दगदरी एक्टिव इंग्रेडिएंट मुंगुर चोली दी लातरो सब रिजिदन चा दाने दी इस्तेमाल करी जी जको खुर तो मुंग बार बार दा आयू जमंग न सुखन पुई गुर दा और जी अब या पक कॉस्मेटिक की जमंग का मतो जरूर दा अगे तो सुख न रह रही की मुंग तो बार बार दा वही चे पारी उकुर की बखीगी और यो कुर की जितने चे दो दरी जनाना पखोले खुद बाज बाज जनाना पलास की खुंद हुई आग खुंद जमी अगे दो बार देर बेहतरीन केमिस्ट मुंग साथ ली हुई अगे लगी आई जमंग प्रोडक्ट्स तैयार ही जमंग कम प्रोडक्ट्स असल अगे अगे की एक्सपीरियंस हुई तजुर्बा हुई अगे की अगे स्पेशल दबाने मुंग की मुरबाने तैयार हो उठाने को मुरबाने तैयार हो दाम तैयार हो ना ना ना ना ना अल्हम्दुलिल्लाह जमंग द फेस वॉश दोबारा बिल केमिस्ट दी जमंग द ऑर्गेनिक फेस वॉश दोबारा बिल केमिस्ट दी जमंग द एक्नी फेस वॉश दोबारा बिल केमिस्ट दी जमंग द ऑर्गेनिक क्रीम दोबारा बिल केमिस्ट दी जमंग द बेलाडोना विटामिन सी क्रीम दोबारा बिल केमिस्ट दी जमंग द बेलाडोना

नेक्स्ट वन सुख दीजी छे अस्सलाम वालेकुम भाई तासु संगे आओ तासु तो उबासित भाई ता सलामन दे जीजे चु दोल समकली जाओ दे बेलडोना वो मकली जमो डेढ़ डेढ़ जात मुबारक सदीका नूर जिल्ला सवाबी वालेकुम सलाम सगना शगुफ्ता मरु दरसरा डेरमन शगुफ्ता मरान सलामन की वालेकुम सलाम नेक्स्ट वन सुख दीजी छे अस्सलाम वालेकुम भाई तासु संगे आओ तासु तो उबासित भाई ता सलामन दे जीजे चु दोल समकली जाओ दे बेलडोना वो मकली जमो डेढ़ डेढ़ जात मुबारक सदीका नूर जिल्ला सवाबी वालेकुम सलाम।

0: सुन के इंतजार चाचा कड़े हो चाचा इंतजार कड़े वाला इंतजार चाकड़े हो कनाला जर जरा जीरो लगा रहा तू है चाचा इंतजार कड़े हो का इंतजार चाहना हो कड़े हाँ
1: उसे खुदा से
0: चाचा इंतजार कड़े हो नजर जर अगर अला खबर रहा क्या और इस कल्याण में इस काले हो क्या और तू है छे संगा इंतजार मुकड़े हो कना हाँ चाचा इंतजार करे उन दाहा और टूल में नवाली यो जहान यो नड़े मन ना और चाचा ची इंतजार ना उकड़े दागी हम यो जहान यो नड़े मन ना बल्कि द टूल में नवालो द टूल और इधन को द टूल कदरमंद और इधन को द टूल ख्वागु द टूल द टूल मन ना उस शुक्रिया चाचा इंतजार करे उच इंतजार ना उकड़े द टूल मन ना शुक्रिया हाजी सिंह दी जमा शरान सिंह दी जमा के शरान सिंह दी जमा जोली टूल खदी तभी सरा
2: सरा
0: मामी ज्ञानी सिंह दी चाची ज्ञानी सिंह दी मामी और मशरान बाबा गान सिंह दी और काका गान इनकी त्रुना और तभी सरा सरा मामा गान सिंह दी मामू गान खान और तभी सरा सरा जमगा रुना भाई गाने के हमजोली और जमगा वाड़ा वाड़ा गुलाली गुलाली माशुआ अगत सिंह दी खरी दगे सरा सरा संग दी जमुंगा का टेलरान रुणा दगे सरा सरा संग दी जमुंगा का जमींदारान रुणा और दगे सरा सरा संग दी जमुंगा का टीचरान और रुणा और हेडमास्टरान इनके प्रिंसिपलान और अफसरान दगे सरा सरा कारोबारियान रुणा

Γαρές δάωρο στο μου πακιούκλο σε καβέ. Τσέρτα πακιτέλε με ώρο. Τσέρτα νεβε τελεχό. Αορτά και σαρά σαρά νέν χωτά αχτάρο. Κινζα μαρας τα κανά. Άω κανά δημάγ αγώ. Καμζούρι σίβιδι ζέκα και βάδαμ χατάμ σίβιδι. Ανώ αγά δημάγ αμ καμζούρι σίβιδι χα. Αβάλτα και σαρά σαρά τα γαβάχτα χαμ δομρα παμάντα μάντα πάνε ραβάντε. यकीन के ज्यादा पता लगी आओ पिंजा महाराज दा दख्तर पिंजा महाराज जो नदा सीधा जी आगा डेर मीनवाल बाबा की चक्कर लहम तली रागली भी और दगे सरा सरा सबला खादिया ने ओपा की हमशी हुई और दगे सरा सरा सबला बर फरोगामा तो आगा बेप के हम रा जुड़कड़ी भी और एंजॉय कड़ी भी फंदुना मजीबत मलगुरु अगस्त भी और सुख बाबा की कहो यो खाते सुख बाबा

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: तपदा प्रोग्राम के मैसेज डाले गए जी बिल्कुल 693 693 93 राशि पता नंबर था समात मैसेज हो गया अल्लाह समदा से खुशहाल खुशहाल एम पुई गमना लगे उसके जिस लो ले गए मगर तीज लगे आए मखो दास मेरा ठीक वही समदा से खुशहाल खुशहाल एम अल्हम्दुलिल्लाह संग खगु दास खुशहाल नहीं कतासम पर वैम दास वैस रवली गे जी तासु टंकली जडी मुबारक शाह अस्सलाम वालेकुम तासु टुल त द हिदर वैस रिकॉर्ड के 693 693 93 पदा नंबर पदा व्हाट्सएप मुंग तरवली के मोबाइल तब रिकॉर्डिंग की गेल तब तासु रिकॉर्डिंग हो गई कतासु न पकी गलती है सचिवी अगर से बमुंग ठीक हो खस्ता पखकुली आवाज की पखकुली अंदाज के ओखप जोश जज्बा के तासु द वॉइस कम दे रिकॉर्ड के गमुंग तरवली के बाकायदा बिया इंशाल्लाह मुंग चिकम देगा बाकायदा मुंग पदा प्रोमो के शामिल हो तर लस रोज पूरी द 1 जून वाला तर द लसम जून पूरी इंशाल्लाह मुंग दगा चलो दगा बता सुख पल आवाज नो बार बार पदा प्रोग्राम नो के अवरे और पदा प्रोमो के मुंग त चा खस्ता पगे त बदा बेलडो स्थान नक दिनाम और को दिस रद बदा बेलडो ना प्रोडक्ट नंबर को कमंग ता द हॉस्पिटल चा खस्ता प्रोमो रवली गलन द हिदर मोहम्मद अस्पताल द सेट नंबर कांग्रेस इंशाल्लाह नक दिनाम मिलावी के दिन लावे चकम दे बेलडो ना प्रोडक्ट द बेलडो ना बेग बहुम ता से मिलावी गिनो खगु उस पता सुबान डिपेंड कवी आय कता सो खस्ता वाई सुन रिकॉर्ड को ले छे कना खपल रिकॉर्ड के माशुमान नो रिकॉर्ड के नूरी जिन को लकान नो रिकॉर्ड के मशरान नो रिकॉर्ड के आप दगा 0300 ची कम बेलडोना कूपन क्रीम दी कम ची जमुंग सलवी पागी बाने दगा 0300 ची नंबर आगले दे पागी बाने ता समुंग तो व्हाट्सएप पाने दा खपल वॉइस रवली गई और आज ही ता समुंग ने इनामात में गटे ओ अल्लाह सूरत चैनल्स पे मुख्तलिफ चैनल्स
1: बा तारगीरा मुबारक रे मशफिक रहमान शफिक फैती सर दे और जमाल तरफ पटूल मीनावाल उस्ताद बेलडोना तारगीरा मुबारक पा ग्राम मीनावाल जिन बेलडोना सितारा और जमात तरफ नाता जिन को ताज बेलडोना तारगीरा बेलडीरा
2: मुबारक अस्सलाम वालेकुम आई एम टीना फ्रॉम चरसंदा मेरी तरफ से बेलडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो
3: मामिल जीन इज्जत शाह आफरीदी और जमाल तरफ है द बेलडोना सालगिरह डॉक्टर हैदर अली मोमन तेरा तेरा मुबारक शी
4: विशाखन दुगुनेर ना द बेलडोना
5: मुबारक शाह जीन के फैंस के सब डिजिटल मुबारक शाह हमारे तरफ आता है तो ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सालगिरह डी हरी मुबारक शाह

ऑलराइट जनाब, FM 94 रेडियो दिलबर स्वाभी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मनन मेहरबान, शुक्रिया था शेखर BCR के, आप लोगों ने ट्यून इन किया हुआ FM 94 रेडियो दिलबर स्वाभी। जी हाँ, एक मरतबा फिर मोहब्बतों भरे सलाम के साथ हाजिर हूँ मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का अपना साथी ताहिर जमान। आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर स्वाभी। और कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ होंगे और अपनी अपनी दुनिया के रंगों में मस्त भी होंगे, जबरदस्त भी होंगे। अच्छी बात है अगर आप मस्त हैं, जबरदस्त हैं। सबसे पहले स्वाभी और स्वाभी के गिर्दनुमा में जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है जी, तमाम नए और पुराने सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं जी। जनाब, ये शाम के करीब का वक्त कितना अजीब होता है और कितना खूबसूरत भी होता है ना। दिन की थकन आहिस्ता आहिस्ता उतर रही होती है, सूरज अपनी रोशनी समेटने लगते हैं, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं और इंसान का दिल भी जाना दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ सुकून तलाश करने लगता है। और यही वो वक्त होता है जनाब जब इंसान खुद से भी बात करते हैं और अपने दिल की आवाज भी सुनते हैं, इसलिए ये वक्त जो है ना दिल के बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा करीब होता है। और जनाब अगले एक घंटे में कुछ मेरी बातें होंगी, कुछ आप लोगों की बातें होंगी, कुछ हंसी मजाक भी होगा और कुछ एहसास भी होंगे, कुछ यादें भी होंगी और कुछ वो बातें होंगी जो शायद जो है ना हम सब के दिलों में मौजूद हैं मगर जबान तक नहीं आ पाती। यही तो खूबसूरती है जी इस महफिल की कि यहाँ सिर्फ जो है ना आवाजें नहीं मिलती बल्कि जो है ना एहसास भी एक दूसरे से मिलते हैं। और जरा बताइएगा जनाब के जिंदगी के हालात वाकया जो है ना कैसे चल रहे हैं, जिंदगी आप लोगों के साथ क्या सलूक कर रही है? कभी खुशियों के फूल खिलते हैं जी इस जिंदगी में और कभी आजमाइशों के रास्ते मतलब जो है ना मौजूद होते हैं। कभी जिंदगी हंसाती है और कभी जो है ना खामोश कर देती है, लेकिन जिंदगी का हुसन ये भी है कि शायद जिंदगी का हुसन इसमें भी है कि ये एक जैसी नहीं रहती जी। अगर हर दिन जो है ना खुशी का हो तो खुशी की कदर जो है ना खत्म हो जाएगी जी। मेरी ये बात याद रखिएगा कि अगर हर दिन खुशी का हो तो खुशी की कदर खत्म हो जाएगी। खबर सरयात साथ है यहाँ। और अगर हर दिन गम का हो तो मतलब जो है ना उम्मीद भी मर जाएगी जी। इसलिए जिंदगी खुशी और गम के दरमियान चलने वाला एक खूबसूरत सफर है जी।

जनाब ये शाम का वक्त जो है ना कितना ही अजीब वक्त है, मतलब कितना ही मतलब अजीब टाइम है। आज का हमारा मौजू बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक सवाल भी है जी, जो शायद जो है ना हम सब के दिल के करीब है। आखिर हम एक दूसरे से इतना जल्दी जो है ना क्यों उकता जाते हैं, मतलब एक दूसरे से हम क्यों थक जाते हैं, हमारे दिलों में नाराजगियां क्यों मतलब जो है ना खत्म नहीं होती, क्यों जो है ना नाराजगियां हम लोगों ने पाल रखी होती हैं, क्यों हम एक दूसरे से नाराज होते हैं। वो लोग जो कभी हमारी खुशी का सबब होते थे, वही लोग जो है ना कभी कभी हमारी खामोशी की वजह भी बन जाते हैं जी। क्या हम एक दूसरे को जो है ना वक्त देना भूल गए हैं, क्या हम एक दूसरे को जो है ना समझना छोड़ चुके हैं, या फिर हम सिर्फ जो है ना अपनी बात सुनना चाहते हैं और दूसरों की बात जो है ना सुनना ही नहीं चाहते है। शायद असल मसला यही है जनाब कि हम ताल्लुक तो चाहते हैं मगर जो है ना ताल्लुक निभाने का सब्र नहीं है हमें, मोहब्बत तो चाहते हैं मगर जो है ना समझने की कोशिश नहीं करते। तवज्जो तो मतलब जो है ना हमें मतलब ये कि तवज्जो की जरूरत होती है, तवज्जो तो हम चाहते हैं।

So, ladies and gentlemen, girls and guys, हम तवज्जो तो चाहते हैं मगर तवज्जो देना भूल जाते हैं जी, और फिर ऐसा ऐसा दिलों के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं, लव्ज बाकी रह जाते हैं मगर एहसास खत्म हो जाता है। तो आज के इसी मौजू पर बात होगी जी, आप भी सोचिएगा आपकी राय जो है ना क्या है, आखिर दिलों में नाराजगियां क्यों आती हैं, लोग एक दूसरे से मतलब क्यों जलते क्यों हैं, या फिर ये कि नाराज क्यों होते हैं, या लोग एक दूसरे से उकता क्यों जाते हैं, और क्या इन फासलों को मतलब जो है ना कम किया जा सकता है या मतलब खत्म किया जा सकता है कि नहीं। अपने ख्यालात जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा जी, ताहिर जमान के साथ शेयर कीजिएगा, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 09382804595 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये आप लोगों का और हम सबका मतलब जो है ना एक मुश्तरका प्रोग्राम है, मुश्तरका महफिल है, और आप और मेरी बातों की महफिल है जी, एहसास की महफिल है, प्यार की महफिल है, मोहब्बत की महफिल है, मोहब्बतों की महफिल है। सो जरूर आइएगा, जरूर शामिल होइएगा, और अपने होने का एहसास जरूर दिलवाइएगा। मैसेजेस अगर करना चाहते हैं तो मैसेजेस भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी मैसेजेस भी कीजिएगा, ठीक है ना।

0: रेडियो दिलबर, आपकी दिल की आवाज,
1: आपकी दिल की आवाज। मामू का बोका खुले दे।

मेरी तुझे यकीन क्यों नहीं आता मेरी वफा पे, किस किस को नहीं छोड़ा तुझे पानी की खातिर।

0: मोहब्बत में से ही मेरा भरम ही रख लेते। मैंने लोगों को तुझे अपना बताया रखा था।
1: मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं।
0: कभी खुद को मेरी जगह रख।
1: सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।
0: तुझे तरस ना आया तो छोड़ देना।
2: मैं मर जाऊंगी।

0: मैंने अपने और आपके रास्ते जुदा करने का फैसला कर दिया।
1: चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं मुझसे लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ।